चार चकारे और छड़ने हैं, और जिस तरह सूरमे जंग विच जोश के नाल अगे वधदे हुए चकारे छड़दे हैं, इस तरह ही सारिया ने हाथ खड़े करके चढ़दी कला विच चकारा छड़ना है, ताकि यह साड़ी गूंज कलगियां वाले दे चरणा तक पहुंचे। पाकिस्तान दे नाल जिस वेले 1972 की लड़ाई लगी तो फौजी जिहड़े सन पिछा हटे, तो उस वक्त एक हिंदू कैप्टन ने भजदे हुए फौजियों नूं यह जकारा गजा के वंगार पाई सी कि कलगियां वाले का जकारा सुनो और वापस परतो अपनी चौंकी ते। और यह हकीकत है कि वह जिहड़ा जकारा हिंदू कैप्टन ने छड़िया उस नूं सुन के भजदे हुए फौजी फिर वापस आए और इस चौंकी ते आके फिर हिंदुस्तान की फौज ने कब्जा किया। आओ ये कलगियां वाले की बख्शिश की हुई नाद ये जकारा सारे रल के आपां गजाईए।

ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी आखन लगे, ओए चनना मां नूं तके मार के रब नूं घरों बाहर कढ के ते संतां दे डेरियां ते सुख भालदा फिरदा है, वो तेरी मां नहीं वो तेरा रब है। जे तू सुखां दे नाल झोलियां भरनियां ने ते जा अपनी मां दी सेवा कर, तेरा रब तेरे घर बैठा है। ते सतसंगियो कलगीधर पातशाह भी यही आख रहे ने, कहिंदे जिहड़ा सिंह अपनी माता पिता दी सेवा नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा अपने बजुर्गां दी सेवा नहीं करदा सत्कार नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उहदे नाल रिश्ता है जो अपने माता पिता दा सत्कार करदा है, अपने बजुर्गां दी संभाल करदा है।

अगला चढ़दा दिन हर अमृत वेला हर चढ़दा दिन जिस वेले मैं भगती दे मार्ग ते तुरना चाहना मेरे राह विच पहुंक पहुंक के मैनू ए परेशान कर दे लोभ तृष्णा ते आशा इन्हां दे पहुंकण दे नाल मेरे अंदर हलचल पैदा हो जाती बल्के पहुंकें सलाह बयान बड़िया भयानक आवाजा कढ़दे कूड़ छुरा मुठा मुरदार पुराने समय च कुछ लोग जंगली कबीलियां चो ऐसे भी होंदे सन जेड़े ना तो लिबास चंगा रखते सन ना उन्हां दे खान पहनन पीन की मर्यादा सी कोई ना उन्हां दे डेरियां ते कोई समाजिक मर्यादा ही सी जो मिल गया मार लिया खा लिया जिन्हू वेखिया लुट लिया आम तौर ते साडे लोग सासियां नू भी ऐसा करके जानते रहे ने हालांकि सासी कौम कुछ होर सी ए राजपूतां दे ओ लोग सन जेड़े साहस करके हिम्मत करके बागी हो तुरे सन पर क्योंकि थां थां फिरदियां होया इन्हां लोकां ने भी चज नाल कोई टिकाणा ना बनाया इन्हां दी मर्यादा भी खाण पीण पहनण दी कोई चंगी ना रही ते आम तौर ते समाज च इन्हां नू भी उसे निगाह नाल वेख्या जाण लग पिया जेड़े असभ्य लोग सभ्यता रहित सभ्यताहीन लोग साडे समाज च बसरे होए सन जेड़े किसे समाज नू किसे इंसानियत दे कानून नू मनण नू तैयार नहीं गलत खाण पीण गलत काम करन वाले ते फिर लोकां नू लुट्टण मारण जो कुछ मिल जाए आम तौर ते उह बिल्ले न्योले जो कुछ मिल गया सब खा लैंदे सन हुण उह छुरा भी रखदे सन तीर भी रखदे सन हथियार रखते सन हालांकि वीरता दी निशानियां शस्त्र कोल होना बहादरी का निशान है लेकिन उन्हां वास्ते जिन्हां परपकार वास्ते वरतना वे जिवें तुहानू महाराज ने बख्शे ते जिहड़ा पराए बुरे वास्ते किसे दा नुकसान करके किसे नूं तरफा के उहदे च स्वाद लैण वास्ते हथियार वरते जाण ते फिर बड़े भयानक हो जाण। महाराज कहिंदे ने मेरे अंदर कूड़ दा छुरा मैं लक नाल बने हराम खाना क्योंकि महाराज ने पावन बाणी च बड़ा स्पष्ट किया है हक पराया नानका उस सूअर उस गाय मुसलमाना वास्ते जिस तरह सूर हराम है हिंदुआ वास्ते जिस तरह गां दा मास हराम है इसे तरह किसे दे हक ते निगाह रखनी किसे दा हक मार के खाना जिवें इन्हां दोहां कौमां वास्ते इन्हां दो चीजां नूं हराम मन्निया गया है इसे तरह इंसान वास्ते पराया हक हराम है। ते महाराज अग्गे भी कहिंदे ने गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए जे इह हराम दा मुरदार बंदा नहीं खांदा तां गुरु पीर भी बांह फड़दा ते जे बंदा कहे मैं गुरु का भी बनिया रहां गुरु की सांझ भी बनी रहे ते मैं हक हलाल की बजाय लोगों का मार मार के खांदा रहां तां गुरु वल्लों हामी भरे जाण दी कोई गुंजाइश नहीं। महाराज कहिंदे ने इस तरीके दे नाल मेरे अंदर हक पराए दी निगाह जिहड़ी है उह इक मुरदार खाण वाली गंदी बिरती इस तरह मैं बड़ा मारखोरा भयानक रूप लैके फिर रहा मैं पत की पंध मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी की कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनू बचा सकता इसे आसरे मैं यह आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा मुख निंदा आखां दिन रात मैं लोकां दे औगण कढ के ये सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजियां दे औगण कढदा रहे अपने औगणां ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणां ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवेगा। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह दे पावन दरबार च आप जानदे हो साहिबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरियां मोटिया मोटिया सब बीमारियां का इलाज महाराज सच्चे पातशाह की निगरानी हेठ होया करता सी बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने

तो बच के अमृतसर दे नेड़े पहुंचे। मत्से रंगड़ तक पहुंचन दी स्कीम कर ली। एक पुरानी थे तो ठीकरियां इकट्ठियां कर एक बोरी विच भर लिया। अपने केस पिछे नूं सुट चौधरी जट्टां वाला भेस बना लिया। तलवारा चोलियां दे हेर लुका लिया ते हरमंदर साहब वल नूं तुर पए। दोनों शेर दर्शनी ड्योड़ी जा पुजे। बूहे दे सज्जे हथ लगदी बेरी नाल सिंघां ने घोड़े बन ले। भाई सुखा सिंह ने बोरी नूं मोढ़िआं दे चुक लिया। पहरेदारा ने सोचिया कि किसे पिंड दे नंबरदार मामला उतारन वास्ते आए होणगे, सो किसे ने भी उहनां नूं रोकिया नहीं। भादों दी दुपहर होण करके उस वक्त जोर दी नेरी वग रही सी। सिंघां ने अंदर लंघ मन ही मन अरदासा कीता, हे सच्चे पातशाह तेरे सिंघां दा वार खाली ना जावे। की वेखदे हन कि हंकारी मस्सा पलंग ते बैठा हुक्का पी रहा है, कंजरी नचदी पई है। सुखा सिंह ने अंदर लंघदे ही बोरी नूं पलंग दे थले सुट दिता। जो ही मस्से ने बोरी नूं वेखण वास्ते अपना सिर हेठां झुकाया तां भाई महताब सिंह ने तलवार दे इक्को वार नाल ही मस्से रंगड़ दा सिर वगा के हे

छोटे छोटे पीस जिहड़े हैगे ओह शस्त्रां दे चाल दिखांदे आ। असीं शस्त्र दे पूजे कर रहे हां हुणे। ऐ शस्त्र नाम माला है। असीं शस्त्रां दे गिणदे आ, उहदे नमस्कार करदे आ। यही हमारा पीर। बस माफ करना भी मैं शब्द रोक लिया, पर मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा जिहड़ा आनंद सानू आ रहा सी रियाज दे विच, थोड़ा तुहानू पता लग जाए।

इसने हुक्का दिता ना, आवाज मारी ना, तां सच्चे पातशाह ने कहा कि कैसी नवी चीज बाजार विच बिकन वास्ते आ गई है। कैसी चीज है? क्योंकि सतलू सोते पैसे अनंतपुर दियां गलियां विच बाजारां विच सब्जी विकदी है, कपड़ा विकदा है, शहद माखियो विकदा है, दुध विकदा है, रेशम और पट विकदा है। लेकिन अज सवेरे सवेरे अमृत वेले एक ऐसी साजा ते कैसा होगा, इन्हें चुनू इर्द गिर्द वेख के नंद लाल ने फिर आवाज मार दी, कहन लगा

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिहदे नाल केस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते ने नाम तेरो केसरो लै छिड़कारे, कहते ने वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल

संग सज्जन जितने भी माई पाई साहब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र चरणा अंदर कोमल चरण अंदर जुड़ बैठे हो पावन दरबार दियां अमृत वेले दियां हाजरियां अते इलाही बाणी दा कीर्तन नेता प्रति सिख दे जीवन सिख दे कर्म अनुसार नेम अनुसार रोजाना सत्संग हाजरियां भरन वाले हो गुरबाणी का मनोहर कीर्तन यह मन नूं सुख देण लई यह मन नूं शांति देण लई यह सड़े हुए मन नूं हरा करन लई यह तपदे हुए मन नूं ठंड पाउण लई इक कीर्तन ही एक आसरा है जो कि इस कलयुग के विख्यातां तों इक कलयुग के तत्ते झोलियां तों इक कलयुग के सड़े हुए मन नूं ठंड पाउण लई इक कीर्तन ही है। यह सड़िया हुआ मन इस कीर्तन नाल ही ठंडा होता है। इस कीर्तन नाल इस मन का जहर निकल सकता है। जिवें सप्यादा एक बीन वजा के एक राग की धुन कढ के वो जहरी सप नूं जहरीले सप नूं वो डंगल वाले सप नूं अपने वस विच कर लैंदा है कील लैंदा है इवें ही यह मन जहरी है। यह मन जहर का भरिया होया यह मन डंगल वाला है। इनू भी कीलण वास्ते इनू भी वस करन लई इनू भी सीधे रस्ते ते पाउण लई एक गुरु का शब्द एक गुरु का कीर्तन एक आसरा है एक टेक है। रोजाना आप कीर्तन सरवण करते हो सतगुरु के चरण कमला अंदर जुड़ बैठे हो थोड़े जी अखर सरवण करना फिर समाप्ति कर दिया। एक बार प्यार नाल बोलो सतनाम। कैसा है गुरु का प्यार जिथे असी रोज आते हैं कहो जहा आनंद इथों मिलता है। आ पंक्तियां तुहाडे सामने पेश करना ते किन्नी दयालता है सतगुरु विच किन्ना दयालु है किन्ना कृपालु है किन्नियां बख्शां दा भंडार है किन्ना रहमतां दा भंडार है। भाई साहब जी बयान करदे भाई साहब भाई गुरदास जी महान फिलासफर गुरमत दियां नींहां रखण वाले गुरमत दियां बुनियादां लिखण वाले सिखी दा सिद्धांत मुढ़ला दसण वाले भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे आंब की सदर कथ मिटत आंबली खाए आंबली खादियां हुई इमली अंब की सदर नहीं लेंदी। जे कोई कहे कि इमली खा के मैं अंब की इच्छा पूर्ण कर रही है अंब की सदर रह गई है भाई साहब जी कहने नामुमकिन है। आंब की सदर कथ मिटत

परम सत्कार कुशासन। सतगुरु जी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दे सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा है जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे। हुण दवाई दा असर भी ताही हुंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लैके आ गए, डॉक्टर कोल गए,

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है पर किस तरह आठ पहर आराधी अठे पहर उदी आराधना करिए उदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नाश होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना दवाई ते दित्ती है ए ना होवे कि दो खुराकां खा के ते फिर छड़ देवे कि थोड़ा जिहा आराम ते आ गया है हुण दवाई दी की लोड़ है। दवाई खाई जानी है जदू तक पूरी तरह आराम नहीं आता। एक बार करो रसना पवित्र प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाह। अज वो पवित्र दिहाड़ा जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक बारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वाल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहर दे संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगतां आईयां एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिथे गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहे। लाल चंद दर्शन करन आया गुरु हर कृष्ण साहब नु देखिया

मंगी जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए। किवें मंगे बबीहे दी तरह, उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है ना, दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सो, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,